0: यति कार्पेट किन्दा कार्पेटको पछाडि यतिको लोगो हेर्न नबिर्सिनु होला। यति कार्पेट, कार्पेटको शहनशाह।
1: Visitor, enjoy with us.

0: ओ मेरो फुलीवाली, अब के छ त
1: विचार? के विचार? को फुलीवाली? म त बहिनी।
0: बहिनी त साली, तिमी नै त अनि मेरो फुलीवाली।

0: web surfer, have a kakana fast internet.
1: Classic Tech को Wi-Fi 6 router नाम एक Harmonic शक्तिशाली 4 antenna में wide coverage 5G strength low latency raw fast speed सभी अस्त्र को शक्ति बोके को 200 Mbps को internet अब 3 महीना कलागी मात्र 3300 रुपया में साथ में IPTV मात्र 250 प्रति महीना booking को लागी 9801004477 शर्तहरू लागू हुनेछन् Classic Tech छोयो कि चलो